पुदनों पवन पाणी बसंतर गावे राजा तरमनवारी गावन तुदनों चेत गुप्त लिख जानन लिख लिख तरम विचारी।

हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत बिचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हौ तुद बिन अभर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक दिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर ध्याया जी, तन तूटी जमकी फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तनका पाओ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करहें हर पूजा जी, तप तप

अपना जान करो व्रत बारा। हमरे दुष्ट सब तुम काबहो, आप हाथ दए मोहि बचावहो। सुखी वसै मोर परिवारा, सेवक सिख सब कर तारा। मोर अच्छा निज कर दे करे आए, सब बैरन को आज संगरे आए।

चुन चुन सतर हमारी मारी है, आप हाथ दे मुझे भरे आए, मरण काल का त्रास निभरे आए।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जाने ओ। सरियस पान

कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सुख मनोविसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

सुख नानक सरणी पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोहिला रागोड़ जी की महला पहला। सतगुर प्रसाद जय कर कीरता की जय करते का हो विचारो। तत्कर गावो सोहिला सिवर सिरनहारो। तुम गावो मर मेर पहुपा सोहिला। हों आरी जत सोहिला सदा सुख राव। नैत नत जी अड़े संभालिया नु देखा गा देवन हारो। तेरे दाना कीमत ना पवै तसदा की गवन समाल। समत सा लिखिया मिल कर पावो तेल। देह सजना सीसणिया जो होवै साहिब तो मेल। कर कर रूप हंसा सदड़े नत पवन। सदन हारा सिमरी है नानक से भी अवन। राग आसा महला पहला। श्री कारु श्री गुर श्री उपदेश। गुर गुरे को वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो कर रास बढ़ाई तोय राव। विश्व जसियां कड़ियां पहर आंसिती वारी महा होआ। सूरज को रुत अनेक। नानक करते के गेते वेश। राग तन आसरी महला पहला। गगन मै थाल रव चंद दीपक बने। तारिका मंडो जनक मोती। धूप मल यान लो पवन चबरू करे। सगल बन राय फूलांत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंड ना तेरी आरती। अनहदा शब्द वाजंत फेरी राव। सहस तब नैन नैन नैन है तोहे कौ। सहस मूर्त न नायक तोही। सहस पद बिमल नानेक पद गंध वैनो। सहस तब गंध चौत मोही। सब मैं जो जोत है सोए। तिस दा चरण सब मैं चरण होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। जोत सुभाव है सो आरती होए। हार चरण कवल मकरंद लोभित मनो। आनंद न मोह आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारें पावे। जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर व परया। मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मान हरलिव मंडल मंडाही। कर साधु अंजलि पुन वडाही। कर डंडाओ तो पुन वडाही राव। साकत हर साध न जानिया। तेरे अंतर हम मैं कंडाही। ज्यों ज्यों चल है जुवै दुख पावहि। जम काल सह सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम समाणे। दुख जन मरण पव खंडाही। अविनाशी पुरख परमेश्वर। बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख बड़ बड़ा ही। जन नानक नाम धार टेक है। हर नाम ही सुख मंडाही। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनंती सुनो मेरे मिता। संत टहल की बेला आईया। खाट चलो हर लाहाया। गै बसन सुहेला। औद कट दिन सरै नारी। मान गुरमिल काल सुवारी रहाओ। ए संसार विकार संसे मैं करो ब्रह्म ज्ञानी। जिस जगाई पिया वह रस। अकथ कथा तिन जानी। जै को आई सोई बिहा जाओ। हर गुर ते मने बसेरा। निज कर महल पावो सुख सहजे। बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते। शरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे।

0: आ गुरु का बाणा, गुरु की फौज करेगी
1: फौज
0: फौज। गुरु का बाणा है, लोग देख के हंसते ने, ऐसी दशा हमारी है। आ एक न्यंग सिंह जी बैठे ने, हिसाब ला लो मेरे ख्याल में भी 3 फुट की दस्तार होगी उची, सीढ़ी भी बिच ही है कुछ अपना, एक सीढ़ी भी बिच ही है, खंडे भी लगे ने बड़े। ये गुरु का बाणा है, और नहीं कितने देखने मिलता, थां थां से नहीं। गुरु अज भी बड़े ने, किसी ने यह जहा बाणा दिता है, कदी किते कदी किते कदी किते कदी किते फिरते हो। ओ गुरु गोबिंद सिंह वर्गा गुरु नहीं लभना जड़ा अपना ही रूप दे देवे आखो सतना। श्री वाहे गुरु, आओ सारे साथ दया करो, सारिया ने बाहां खड़िया करनिया, कई तो संगद्या ने मर जाना, कई ने कई संगद ही नहीं बाहां खड़िया करते, संग लगती है। MLA दे नाल किवें फिरदा हुंदा, मंत्रियां नाल सरपंच नाल, उदों फिर उदों बाहां खड़िया हो जांदियां तेरियां। सारे साथ दया करो, जो इत्थे ही बाहां खड़ी ना कीती फिर खड़ी करोगे भी की।

महान कृपा कीती है जो सानू गुरु मान्यो ग्रंथ चेतना समागम विच हाजरी भरन दा मौका मिलिया। उस तो बाद फिर संगतां दे दर्शन, सतगुरां दे दर्शन और धन गुरु गोबिंद सिंह दा खास रूप गुरु खालसे पंज प्यारियां दे भी दर्शन हो रहे। किड़े उच्चे भाग धन भाग संगतां दे अपने सारियां दे। तो अमृत छक के आईया संगतां नूं दास वल्लों जथे वल्लों सारी संगत वल्लों सारे पंथ वल्लों लख लख वधाइयां। जिहड़े अज गुरु वल वधे ने पहला कदम पुटिया है पिछे ना मुड़े वधदे जायो वधदे वधदे वधदे एक दिन सचखंड तक पहुंचे। पिछे ना मुड़े

चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचै पर आईया, गुर शब्दी एहो मन। गुरु दे शब्द का होड़ा दे दियो, तेरे मन नहीं डोलदा किसी पासे। हुण ध्यान देना जरा, संगत करदे रहो, फिर नहीं टुटांगे कदे भी, फिर जुड़े रहांगे। बाकी भाई ए संस्था वालों जिथे दवान लग रहे ने, समागम हो रहे ने, असी एक साल तो बाद जतन कर रहे हैं भी हुण तीन चार महीने नूं गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार साहिब एक विद्याला खोलना है, विद्याला महाराज की कृपा नाल आरंभ करना है। हुण उहदे विच बड़े बड़े तकड़े विद्वाना लिया के बच्चों बाणी की संथ्या के नाल कथा सिखाई जाएगी। जिथे दवान लगन करे वो इलाके फिर एक कथा बाद भी छड़िया जाएगी। हम तो कले कले पिंड प्रचार भी करता रही, जिन्होंने अमृत छकिया इन्हों का ध्यान भी रखी आ सतना। यह भी हम कदम थोड़े समय बाद लागू हो जाना है, क्योंकि मैं तो चलिया गया कीर्तन करके, पता बाद भी थोड़े सिर पिछों कई टुटन लग पे। पर यह काम नहीं भाई, संभाल के हुण तुसी रखना, महाराज ने कृपा तो कर दिती है, इनू हुण रखना संभाल के। कठे हो गए सारे, लियाओ सुरती उथे ही बरोटे थले बैठे ने कठे होए। ओ तेरे नाल की बनी, बड़ी बुरी बनी, ओ तेरे नाल मैंने तो पानी भी नहीं पुछया, तेरे नाल की होया, कहना कुछ ना पुछो। आ गई माई तो भागो छुट के चूड़िया का गुच्छा, नाल लाल फुलकारी लै लो, सिरां ते चुनिया लै लो, गला हाथां दे विच, बाहां च पा लो चूड़िया, चार

हर कजर बस्तर आभरण कीने उडीनी उडीनी उडीनी कब करिया वैरी रहाउ सरन सुहागन चरण सीस धर लालन मोहे मलावहु कब करिया वैरी सुनो सहेरी मिलन बात कहो सगरो अंग मटावहु तो कर ही लालन पावहु तब रस मंगल गुण गावहु आनंद रूप त्यावहु।

लक्षण पावत ही राचहु नाथ ही सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो आलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर ला है अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस घूटी है संग साधु उल्टी है।

नवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गनका जेह सिमरत मुक्त भये जी।

सुन तत्रु बारक भजन माहे लपटानु अचल अमर निरभय पद पायु जगत जाहे हैरानु नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम।

कै गुर एह भेद बतावै रहाउ। कहां भयो तीरथ व्रत किए, राम शरण नहीं आवै। जोग जग निःफल ते मानो, जो प्रभ जस बिसरावै। मान मोह दोनों को पर हर, गोविंद के गुण गावै। कहो नानक एह बिद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावै। बलावल महला नौवां, जा मैं भजन राम को नाही। तेह नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करै व्रत फुन राखै, नह मनुआ बस जाको। निःफल धर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं।

ज्ञान ध्यान सब गुरते होई, साची रहत साचा मन सोई, मनमुख कथनी है पर रहत ना होई, नाम भूले थाओ ना कोई, मन माया बंदेओ सर जाल, घट घट व्याप रहो बिख नाल, जो आंजै सो दिसै काल, कारज सीधो हृदय संभाल, सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई, मनमुख हो मैं पत गवाई, आपे करतै भगत कराई, गुरमुख आपे दे वडे आई, रैन अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कशोत, वेद पकारै भगत सरोत, सुन सुन मन वेखै जोत, शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं, गुरमुख शांत उत्तम करामं, मनमुख जोनी दुख सहामं।

दूजा देख कहो पावे मन सोए नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला मन का कहया मनसा करे एहो मन पुन पाप उचरे माया मद माते त्रिपत ना आवे त्रिपत मुकत मन साचा पावे तन तन कलत सब देख अभमाना बिन नावे किस संग ना जाना रहाऊ की चेहरा सभोग।

उज्जल तिलक गल माला अंतर क्रोध पढ़े नात साला नाम विसार माया मद पिया बिन गुर भगत नाही सुख थिया सूकर स्वान गर्धब मंजारा पशु मलेश नीच चंडाला गुर ते मोह फेरे तिन जोन पवाई है बंधन बांधे हाय आई है जाई है।

पैदार सुई सतगुर मिला तो तिस को जाने रह रजाई हुक्म पछाण हुक्म पछाण सच्चे दर वास काल बिकाल शब्द भय नास रह अतीत जाने सब तिसका तन मन अर्पै है एहो जी।

अष्टपदी कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंच ज्ञान अंतर लोभ झूठ अभमान बिन नावे पाज लहग निदान सतगुर सेव नाम वसे मन चीत गुर भेटे हर नाम चितावे बिन नावे होर झूठ परी।

प्रभु आप ना बूझे लोक बुझावे मन का अंधा अंध कमावे दर कर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेविया अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जो

चूकै अभमानै गुरमुख नाम सदा सदा बखानै सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सतगुर मिलै वड्डी वड्याई।

निर्मल होवै। गुरमुख परचै परम पद पईआ, एहो जग वर्ण रूप सब तेरा। जित लावहै से कर्म कमईआ, नानक जंत बजाए वाजहै। जित भावै तित राहि चलईआ, बिलावल महला चौथा। गुरमुख अगम अगोचर ध्याया, हों बल बल सतगुर सतपुरखईआ। राम नाम मेरा प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समईआ। जन की टेक हर नाम टकई।

गुरमुख माथ माथ तत कदैया लाल जवेहर नाम पर गासिया भांडै भाउ पवै तिथ अइया दासन दास दास हुए रही है जो जन राम भगत निज पहिया मन बुद्ध अर्प धरो गुर आगै गुर प्रसादी मैं कथ कथैया मन मुख माया मोहे व्यापे एहो मन तृष्णा जलत तखैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया एहो मन नाचै सत गुर आगै अनाद शब्द धुन तूर बजैया हर हर उस्तत करै दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग रत्ता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चोवै अत निर्मल जिन पिया तिन्ही सुख लहिया मन हठ कर्म करै अभमानी ज्यो बालक बालू कर उसरैया आवै लहर समुंद सागर की खिन मह भिन्न भिन्न टह पैया हर सर सागर हर है आपे एहो जग है सब खेल खलैया ज्यो जल तरंग जल जलह समाव है नानक आपे आप रमैया बलावल महला चौथा सतगुर परचै मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन भस्म दरड़ैया अमर पिंड भये साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहीया कृपा करहु मधुसूदन माधव मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाऊ तजै गिरहस्थ भया बनवासी एक खिन मनुआ टिकै ना टिकैया धावत धाए तदे घर आवै हर हर साधु शरण पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करै नहीं बूझै गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर होवा मन दह दिस चल चल गमन करैया पर पवन करै बूझै नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिख है बहुतेरे मन मांग है रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन शांत ना आवे मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंत उपैया साधु सरन परै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमयार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन धना जट सहन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वछल अंगीकार करैया नानक सरन परे जग जीवन हर हर कृपा तार रखैया बलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया राम गुर मोहन मोहे मन लैया हौ आकल बिकल भई गुर देखे हौ लोट पोट होए पैया रहाओ हौ निरखत फिरौ सब देश दसंतर मैं प्रब देखन को बहुत मन चैया मन तन काट देऊ गुर आगै जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया कोई आन संदेसा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट देऊ चरना तल जो हर प्रभ मेले मेल मलैया चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है गुण कामन कर हर प्रभ लहिया भगत वचन ओवा को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे पैया खिमा श्रृंगार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट कट पैया हर हर हार कंठ है बनिया
मन मोती चूर वड गहन गहनैया हर हर शरदा सेज वछाई प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन भैया कह प्रभ अवर अवर के कीजै सब बाद सिंगार फोकट फोकतैया कियो सिंगार मिलन कै ताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया।

नानक हर गुर सरन समैया बलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखे शरदा मन पूरी ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख पुलानी मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यो बिन अमलै अमली मर गईया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर ना पावे बिन हर को दुईया कोई आनान मेरा प्रभु मलावे हौ तिस विटहो बल बल घुम गईया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सत गुर सरन पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल ना पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवे प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया कर कर किरिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसवा कह कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा तारी बाहां पकड़ नानक कड लैया राग बलावल महला पंजवां अष्टपदी घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही ताजे आन सरण गही रहाओ प्रभ चरण कमल आपार हौ जाओ सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे ताजे आन कतह ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उदार।

बिस्माद चख अनंद पूर्ण साध नह डोलिय इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पे कह नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जां की महा बिखड़ी कार तां की मित न जाने कोए जल थल मही अल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मनसा पूर बलाव महला पंजवां प्रभ जन्म मरन निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिस्त हर हर रंग कर दया ले हो नर लाए नानका नाम।

पाल सर्व घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमक रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यो चकवी सूरज आस।

हां खुदियारथ भोग ज्यो मात पूत है हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखई।

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया जो देख दिखावे तिसको बल जाई गुर प्रसाद परम पद पाई क्या जप जापो बिन जगदीसै गुर कै शब्द महल का

तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देव पाए वेसा ज्योति जाति गणत ना आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किस आखां दूर चौथ अपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी पेदा अष्ट दशा खट तीन।

जाई, रस कस खाए साध गवाई, कूड़ै लालच लपटै लपटाई, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता, एन सजागै कबह ना सूता, जागत जाग रहै

सब सोच संयम साच पछाण तेरा सतरवर समुंद किनार अमृत मूल शिखर लिवतार डर डर मरे ना बूढ़े कोई नडर बूढ़ मरे पत खोए डर मह घर घर मह डर जाने तख्त निवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द बीचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले आवे।

होते हैं। परम सत्कार योग गुरु रूप सद संगत सतगुरां दी पार मेहर दा सदका आप सर्वत माई ताई दूरों नेड़ों चल के नित नेम अनुसार सतगुर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरणा विच पुजे तनता दे योग हो। सतगुरां दी बाणी सरवण करके सुआसा नू समय नू सफला कीता है। मेहर करके सतगुरां ने नित नेम जी दी बख्शिश कीती है। शामां दे दीवान कथा कीर्तन दी दात सतगुर दी मेहर दा सदका जो पिछले समय तो सतगुरां दी बाणी पटां दे सवैयां दी कथा विचार आरंभ है। बड़भागी माई पाई नित नेम अनुसार आके लड़ीवार गुरु के बचन गुरु का उपदेश सरवण कर रहे हो। कल आप जी ने सरवण कीता सी, कल सहार जी दे चार सवैये जो श्री गुरु अंगद देव महाराज जी दी उपमा वड्याई शोभा करदे होए संपूर्ण होए। पंजवां सवैया भट कल जी दा आरंभ होया है। श्री गुरु अंगद देव महाराज महले दूजे के सवैये चल रहे हैं। वेदां दे अवतार महान द्विज पंडित विद्वान श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे दरबार विच श्री अमृतसर साहब ये सतगुरां दी महिमा दे बचन बाणी उचार रहे हैं जो श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने साडे कल्याण वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज करवाई है। आओ जो अगली कथा है कल भट जी जिवें श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की महिमा ज्ञान स्वरूप बचन सानू बख्श दे सन शरदा भावना नाल।

0: दृष्ट धरत संहरन दहन अग पाप प्रनाशन।
1: धन धन श्री गुरु अंगद देव महाराज आप जी की दृष्टि जिन्हों गुरसिखा उत्ते कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे। आप जी की दृष्टि विच ए शक्ति है दृष्ट धारत जिदे उत्ते अपनी कृपा दृष्टि धार दिंदे हो ताम हरण ओदे जन्मा जन्मा दे अज्ञानता दा अंधेरा अज्ञानता दी मैल हरण कहिए नाश कर दंदे हो। दृष्ट धारत तम हरण जिन्हां उत्ते सतगुर पातशाह जी की दृष्टि पै जांदी है उन्हां दा तमो गुण है क्रोध अशांति दा गुण शिव जी दा। दृष्ट धारत तम हरण तीन गुणा विच व्याप रहे हैं आप रजो तमो सतो जिदे विच तमो गुण ऐसा है जो नाश करन दी बिरती है लय करन दी बिरती है। ये तो भाव लेना है कि जिन्हां उत्ते दृष्टि कर दिंदे हो उन्हां दे काम क्रोध लोह मोह अहंकार सारियां दा ही नाश हो जांदा है। दृष्ट धारत तम हरण दहन अग पाप प्रनाशन दहन कर देना हुंदा है नाश कर देना जला देना खाक कर देना। हे श्री गुरु अंगद देव महाराज आप जी की बख्शिश जिन्हां उत्ते हो जावे आप जी की दृष्टि जिन्हां उत्ते हो जावे उन्हां दे जन्मा जन्मा किदे कीते अग कहिए पाप अजगर पाप बड़े बड़े विघन अग पाप प्रनाशन प्रनाशन कहिए विशेष तौर ते सदा वास्ते।

दर्शन पे असुविधा अनुसार चितवो अनुदन नहीं खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत दर्शन देख जीवां गुरु तेरा

हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल बस ताकै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए

को मृदान को भूजन दायो गुर करया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओ चाओ पई साहिब एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवें कवि वाच बेनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए जत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दोष सब तुम गावो आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवार सेवक सिख सब कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करे आए सब बैरन का वास संगरे आए। पूर्ण होए हमारी आशा दौर भजन की राय प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर जाओ सुदम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे आए मरण काल का द्रास ने भरे आए। हू जो सदा हमारे पछा सरिया सोजू करो रछा राख ले रखन हारी साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुह पुरी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा बबतरा काल पाई सब जू अवतरा काल पाई कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जबन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जबन काल सब जगत बनायो देव दयांत जशन उपजायो। आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सिव गुण सुख दियो सदरन को बल मोहबद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर बजानत चीटी दे गुंजरिया स्थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने गड़गड़ के बड़ बड़ की जाने। जब दर्ख करा कर दारा प्रज दर्द तब दे अपार जब या करख कर दो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेठ सब धारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत भेद भेद हरियालम। निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील अनाद असंभ दाका मूढ़ चारद भेदा जाको बेब न पावत भेदा कांको कर बाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कैद सदा सेव निरंकार का जीणत न भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती मरनत भैन भैन दोहे तेती तुमरा लखन जाय बसारा केह बिद सजा प्रथम संसार।

करे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक अहमत एक न माने सिमरत शास्त्र भेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ सरी असमान कृपा तुमरी कारु मैं न कहे ओ सब तोहे बखाने ओ बहुरा।

राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सहज से ती मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द दंगा वो हरि के राम मन जिन वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाद रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारणा।

श्रीओ पिंड सब तेरी दास तुम मात पिता हम वर्ग तेरे तुमरी कृपा मैं कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे तेरे अंत सर तुम्हारी तुम्हारा की सरकारी तुम के

बनाए से सो से सेवा कर जितनो को बनाए से हुक्म नया भोय प्रवान ता कसमे का महल पाए से कसमे पावा सो कर मन दिया सो फल पाए से।

कर गल सुनावे हर नाम की हो लगे गौर सिख मन हर दरगे गौर सिख बनाई है जिन्ना मेरा सतगुरु।

प्रभ के सिमरन कृष्णा दुजे प्रभ के सिमरन सब किछ सुजे प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा प्रभ के सिमरन

सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोड़ी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर।

तंग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याय। नानक गुरमुख परम गत पाय। बहु शास्त्र बहु सिमृति, देखै सर्व कडोल, पूजसना

अहंकार। नानक प्रभु सरनागती कर प्रसाद गुरुदेव, कर प्रसाद गुरुदेव, कर प्रसाद।

साथ संग किस स्योर नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग

आद सच जुगाद सच है ती सच नानक हो ती भी सच आद सच जुगाद सच है ती सच नानक हो सी भी सच।

ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक

हे प्रभु, पटकता पटकता मैं तेरी शरण आ पिया हाँ। हे मालक मेरे, नानक की यही बेनती है कि मैनू अपनी भक्ति विच जोड़।

प्रभु की उसत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम।

जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाई मान हुए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने रात्रि दे दीवान विच सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच बैठ करके इलाही गुरबाणी दा कीर्तन श्रवण कीता है। जिवें पिछले कुछ दिनां तों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिन्हां दे पावन पवित्र मुखार दिन तो उच्चारण किए हुए श्लोक ये विचार श्लोकां दी आपां करदे आ रहे हां। अज आप जी ने जो पावन पवित्र हजूर दे श्लोक सरवण किए श्लोक नंबर 23 ते 24, आओ साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज करो कृपा, आप ही अंदर दी एकाग्रता टिकाओ बख्शो, अपनी इन्ना पावन पवित्र बचना दी विचार नरोल गुरमत दे दायरे विच रह के करन दी सूझ बख्शो। आप समूह माई भाई मनो वृत्तियां एकाग्र करो, कृपा करके आप आशीष बख्शो, बड़े प्यार अदब दे नाल उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपा गुरमुख प्यारो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र शब्द दे अंदर इना पवित्र श्लोकां दे अंदर जो आपां नू उपदेश दृढ़ कराउंदे पए ने, महाराज किन्नू जिहड़ा संसार तू अपने नेत्रां नाल तकना पिया है, ये संसार केवल एक सुपने दी तरह है। ते दूसरी उदाहरण गुरु तेग बहादुर जी ने दिती कि केवल सुपने दी तरह नहीं, जिवें एक मदारी जिहड़ा वो खेड खेडदा है, वो अपनी कला नाल अपने गुण नाल अपने इलम दे नाल कई तरह के रंग ढंग के पदार्थ लोगों नूं दिखा के अपने वल आकर्षित करदा है, बस ये संसार की खेड भी एक मदारी की खेड। साहब ने दो शब्द पहला वरते ने सुपना ते देखना, ते आम तौर पर असी देखने का अर्थ करने हुंदे आ वेखना। हजूर की बाणी विच भगत कबीर साहब का वचन आउंदा है ऐसो ए संसार देखना, उहदा अर्थ है वेखना जो कुछ आपां तकने पए हां। ते इत्थे देखना का अर्थ विद्वानां ने कीता है तमाशा। सब कह रहे ने ज्यो सुपना अर देखना ऐसे जग को जान, हे मेरे मना तू एक गल ध्यान विच रख के दुनिया नू समझ ले, जिस तरह रात एक सुपना तू तकना है जां जागदा होया तू किसे तमाशे नू तकना है, बस संसार दी खेड भी एक सुपने ते तमाशे जिन्नी है, इस तो ज्यादा नहीं।

पचित्रनाथ पासाई दसवीं राज साज हम पर जब आयो यथाशक्त तब धर्म चलायो। कलगी तर पाछा बड़ा सुंदर लिख दे ने राज साज हम पर जब आयो ई राज पाठ दी जिम्मेवारी जद मेनू मिली यथा सख तब धर्म चलायो जिन्ना भी हो सकिया मैं इसनू अगे तोरन दी कोशिश कीती। राज साज हम पर जब आयो यथा सख तब धर्म चलायो पात पात बन खेल शिकारा मारे रीच रोज चंकारा देश चाल हम ते पुन पे खैर पाम की सुध लई। ये पौटे की धरती जो राजा मेदिनी प्रकाश की सी राजा मेदिनी प्रकाश ने सतगुरु ने अपनी मदद ले याद किया। जब सतगुरु ने आके सहायता की थी ते मेदिनी प्रकाश कह लगा साहब जी एक याद अपनी तुसी भी इत्थे बनाओ। सतगुरु ने जमुना का तट सुंदर वेख के अपना सज्जा चरण कोड़े तो तले लाया उस धरती का नाम श्री पौंटा साहब पै गया। कहिंदे ने सतगुरु इत्थे विराजमान होए देश चल हम ते पुन पई खैर पावटा की सुध लई।

करे बिलासा अंक पाच के पेख तुमाशा तैसे सिंह कणे चुन मारे तैसे सिंह कणे चुन मारे रोज रीच बहु पात बिदारे हते खास को पाता बराजा लो परा हम सो बिन का जा सदगुरु कहने नहीं फतेह का राजा बिना मतलब की शादी थी इसने हमला बोल दिता सतगुरु कहने ने सी दीवान दे विच बैठे हुए सा जद हमला होया उपरंत फतेह सा को पातब राजा दोहो परा हम सो बिन काजा बिना मतलब ही इसने साडी ते हमला बोल दिता तहां सा श्री सा संग्राम को पै पंचो वीर पिरथी पाए रुपए सतगुरु कहिंदे ने इत्थे मेरी भूआ दे पंज पुत्र आए हुए सन जब उन्होंने हमला हुंदिया तकिया ते अपने पली प्रकार मैदान दे अंदर उन्हें अपने पैर टका के तेज चलानी शुरू कर दिती हती जीत मलंग सोगारी गुलाबंग रण देखिए रंग रूपं सुहाभं हटी जीत मल जी मेरी बुआ दे पुत्र मेरे भरा कहिंदे ने जंग दे विच इस तरह लड़ रहे सन रण देखी रंग रूपं सुहाभं मैं उन्हां दे रंग रूप दा विस्तार नहीं कर सकता कि किस तरह उन्हां ते रूप जंग दा चढ़िया ते ओ जंग कर रहे सन हट्यो मारी चंदन गंग राम जिने कीतियं जीतियं फौज तामन कोपे लाल चंदन कियो लाल रूपं जिने गजियं गर्भ सिंगं अनुपं सतगुरु कहिंदे साडे हलवाई लाल चंद इन्हां नूं भी बड़ा जोश आया गुस्से दे विच लाल हो गए कहन लगे सतगुरु जी मैनू भी आग्या दिओ मैं भी जंग करांगा ते सतगुरु कहन लगे लाल चंद तू कदी तेगता चलाई नहीं जंग किवें करेगा सतगुरु नूं कहन लगा लाल चंद सतगुरु जी मैं तेग ते चलानी नहीं जानदा लेकिन खुरपा चलाना खूब जानना आप असीस दिओ मैं तुहानूं इहदे नाल ही लड़की विखावांगा कहिंदे ने लाल चंद जंग अंदर आके बड़ा सुंदर लड़े उपरंत

चंद गाजी चंदेलन हट्यो हारी चंदन कहे हाथ खेलन। कहंदे ने हरी चंद ने हाथ विच खेला फड़े है की कर रहे है करो सांग धर्मं महारोस रुझन। अपनी मालिक का हुक्म पालदा होया महारोस रुझन का पाप बड़े गुस्से दे विच आके जंग कर रहा है। गयो टूक टूक हैव इसो सूर जुझन। सतगुरु कहंदे ने इवें पली पंत कह रहे हैं कि जेड़ा भी मेरा सूर भी एदे नाल जाके लड़दा है वो टुकड़े टुकड़े होके धरती ते डिग पैंदा है।

हने एक जवानी हरी चंद माए सोजो दल तारे हरी चंद मारे सुजो दल तारे सो करोड़ आयन बाहे काल कायन रनन त्याग पागे सभ्यता सुपा गई भाई जीत मेरी कृपा काल तेरी। सतगुरु कहिंदे ने ही अकाल पुरख ए मेरी जीत होई एदे विच मेरी वड्याई नहीं ए वड्याई तेरी है तेरी कृपा दे नाल अज मैं पहला युद्ध कीता लेकिन इस पहले युद्ध अंदर तेरी मेहर बख्श दे नाल मैनू जीत प्राप्त हुई।

0: कछ पालो न कीनो दस बाल तन बीस रमन।
1: दसा सालां दा बच्चा बीस सालां दा जवान। कहिंदे ने दस साल दा बच्चा पावे कितनी सियानी गल क्यों ना करे लेकिन कहणगे इहदे बच्चा इसनूं कुछ नहीं पता। दसा सालां दा बच्चा ते बालपन दी अवस्था है खेलां दे विच गुजारनी

मेरी मेरी कर दे जन्म चला है। अवस्था इतनी वृद्ध हो गई कहते ने अंत समा आ गया। अंत समा संगिया साथियां ने पुंजे पा दिता। आखिरी सवास ने कहते ने पुंजे पा दे पुंजे पा के ना कोल जोत जगा दी। पंडित जी आ गए मुंह अमृत जल पाउन लग पाए। कहने ने ये आखिरी समय से आया इंसान हिम्मत करके कहता है मेरा पुत्र किथे। घर वाली आख्या महाराज तुहाडी पास सदी हथ बैठ। कहने ने कुछ देर बाद फिर एक आवाज आई दूसरा पुत्र किथे। आख्या जी तुहाडे खब्बे हथ बैठ। कुछ समा फिर बीते कहने ने आखिरी आख्या मेरा तीसरा पुत्र किथे। आख्या जी वही ताडे चरणों में बैठ। कई दिन इतनिया गल्लां कर दे इसते मुंह आवाज निकली जे सारे पुत्र मेरे कोल बैठे ने दुकान से कौन गए। कहण तो पास अंत समा भी आया लेकिन ध्यान प्रभु वाल नहीं गया दुकान वाल चला गया। शायद कहने नहीं है कि जन्म का की लाभ है। गुरु अमरदास पातशाह बिर अवस्था है

ऐसे जीने, ऐसे जीवन सतगुरु ने प्रगाकार कर दिया के जेड़ा जीवन नाम तो विहून है, जेड़ा जीवन नाम तो बिना है।

कि परमात्मा मैं किसी नु बुरा किवें कह सकना, क्योंकि तेरे वालों मैनु शिक्षा तेरे वालों मैनु उपदेश ही ऐसा मिल रहा है। ना हम चंगे आखी है बुरा ना दिसे कोई। हे परमात्मा मैं ता दे अपने आप नु चंगा कहन दे काबिल नहीं होया, किसे नु बुरा किवें कह सकना, किसे नु बुरा किवें वेख सकना, क्योंकि परमात्मा जिधर भी मैं ध्यान मार के वेखना उधर जोत मैनू तेरी नजर आउंदी है।

कबीर साहब का ख्याल बड़ा सुंदर है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं किसी नूं बुरा क्यों नहीं कह सकता,

0: मैं अपने आप नु चंगा क्यों नहीं आखदा, क्योंकि परमात्मा मेरे अंदर ऐसियां चंगियाईयां ने, मेरे अंदर तो अवगुण ही भरे हुए ने। मैं अपने अंदर गुण पैदा नहीं कर सकिया, अपने आप नु चंगा किवें कह सकना।
1: कुचल कटोर कपट कामी, कुचल कठोर कपट कामी,

बचित्रनाथ पाथाई दसवीं राज साज हम पर जब आयो यथा सकत तब तारुम चलायो। कलगी तरपाचा बड़ा सुंदर लिख दे राज साज हम पर जब आयो ई राज पाठ दी जिम्मेवारी जद मेनू मिली यथा सकत तब धर्म चलायो जिन्ना भी हो सकिया मैं इसनु अगे तोरन दी कोशिश कीती। राज साज हम पर जब आयो यथा सकत तब धर्म चलायो पात पात बन खेल शिकारा मारे रीत रोज चंकारा देश चाल हम ते पुन पे खैर पाम ताकी सुध लई। ये पौटे दी धरती जो राजा मेदिनी प्रकाश की सी राजा मेदिनी प्रकाश ने सतगुरु नु अपनी मदद ले याद कीता। जब सतगुरु ने आके सहायता की थी ते मेदिनी प्रकाश कहन लगा साहब जी एक याद अपनी तुसी भी इत्थे बनाओ। ते सतगुरु ने जमुना दा तट सुंदर वेख के अपना सज्जा चरण कोड़े तो तले लाया उस धरती दा नाम श्री पौंटा साहिब पै गया। कहिंदे ने सतगुरु इत्थे विराजमान होए देश चाल हम ते पुन पई खैर पाव ताकी सुध लई।

मटकी तान फोरन। कननी कृपाल चंद उदासी जी ने आई जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारिया, जब कुटका उदे सिर दे विच वजिया, साहब कहने ने मैं ठीक कह रहा, उठी इच्छन कदा मेद जोरन, मनो माखियन मटकी कान फोरन। जब सिर दे विच छोटा वजिया ते उदे विच मगध दियां छिटां इंज बार आईया जिवें कि भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दिती होवे। मनो मटकी कान फोरन, तहानंद चंदन कियो कोप पारो, तहानंद चंदन कियो कोप पारो, लगाई बरछी कृपान सवारो। सतगुरु दे दीवान नंद चंद जी कहिंदे ने कृपाल चंद उदासी वाल आउंदे आ नवाब खां नूं तकिया कि इन्हां नूं मारन लई आ रहे है। कहिंदे ने दीवान ने अगा वध के वार कीता, तहानंद चंदन कियो को पारो लगाई बरछी कृपान समारो। नवाब खां बच गए, कृपान कढ ले। जब कृपान कढ के जंग करना शुरू कीता, साहिब कहिंदे ने टुटी तेग तिखी कढे जम दंडन। ओ तिखी तेग भी टुट गई, जंग करदे जब तेग टुट गई कड़े जम दंडन, इन्हां अपनी

जसोडवालन मुदकर सो साहन पजो संग लेके सुसारी सुपाहन। सतगुरु कहते ने ये अपने आप में बड़े सूरवीर अखवांदे सन, लेकिन मेरे सूरवीर दे सामने इन्हां दे पासों एक तीर भी ना चलिया। इथों तक कि अपनी सेना दी जान बचांदे जंग विचों नठ गए। चक्रत चोपिया गज जांदी चंदेलन, चक्रत चोपिया चंद गाजी चंदेलन, हट्यो हारी चंदन कहे हाथ सेलन। कहिंदे ने हरिचंद ने हाथ विच केला फड़े है, की कर रहे है? करो सांग धर्मं महारोस रुझन। अपनी मालक दा हुकम पालदा होया महारोस रुझन दा पाप बड़े गुस्से दे विच आके जंग कर रहा है। गयो टूक टूक हैव इसो सूर झुझन। सतगुरु कहिंदे ने इह मैं पली पांत कह रहे हैं कि जेड़ा भी मेरा सूरवीर एदे नाल जाके लड़दा है वो टुकड़े टुकड़े होके धरती से डिग पैंदा है।

सुखो क्रोध आयन बाहे काल कायन रनन त्याग पागे सबेता सुपागे भाई जीत मेरी कृपा काल तेरी। सतगुरु कहिंदे ने जी अकाल पुरख ए मेरी जीत होई एदे विच मेरी वड्याई नहीं ए वड्याई तेरी है तेरी कृपा दे नाल अज मैं पहला युद्ध कीता लेकिन इस पहले युद्ध अंदर तेरी मेहर बख्श दे नाल मैनू जीत प्राप्त हुई।

0: वो दुर्लभ है, ये बार बार प्राप्त नहीं हो। जिसनू तू ऐ जान ले,
1: कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होश न बारिंग बार, क्यों बन फल।

पीता जीवन इस तरह है, जो बन फल पाके पुण गिरे बहुर ना लागे डार। मनुख सोच कभी ए भी होया है कि बन दा फल पक के धरती ते डिग पवे, जे फिर तू कोशिश करें उसे फल नू डाल दे नाल ला दिया ते लग सकदा, ऐसा नहीं हो सकदा। इसी तरह ए मनुखी जामा है, एक वरी मिले है दोबारा मिलना है।

बन गया किया ननिका क्यों तू नेक कर्म जेड़े कर सकना है इस जन्म दे विच। सतगुरु ने जीव तेन एक चांस दिता, चांस इसलिए मिले है कि मनुखी जामे अंदर तू गोविंद की प्राप्ति कर सके।

एक अवसर मिले। कहते नहीं अवसर आया हाथ गवा दिता कि बार बार नहीं मिलने। इस जन्म अंदर ही प्रभु दी नाल तेरा मिलाप हो सकता है। कबीर साहब का ख्याल बड़ा सुंदर। कबीर साहब कहते हैं कि जीव नू कि जीव नाम जप सिमरन कर इस जन्म नू सफला कर ले। लेकिन मनुख अनमोड़ है नहीं जानिया। लेकिन कहते नहीं एक दिन अवस्था ऐसी आ गई

0: पाए कछ पलो न तीनो। जन्म पाए कछ पलो न तीनो, दस बाल तन बीस रमन।
1: दसां सालां दा बच्चा, बीस सालां दा जवान। कहिंदे ने दस साल दा बच्चा पावे कितनी सियानी गल क्यों ना करे, लेकिन कहणगी जी बच्चा है, इसनू कुछ नहीं पता। दसां सालां दा बच्चा ते बालपन दी अवस्था है खेलां दे विच गुजारनी।
0: दस बाल तन बीस रावण, तीसा का सुंदर कहावे।
1: तेही सालां दा काम क्रोध विच रसे, तीसा सालां दा सुंदर जवान अपने आप नूं कुआउंदा है।
0: चाली सी पुर होए पचासी पग किसे, हट्टी के बड़े पावे।
1: कहिंदे पर जवान होए चाली सी पुर होए पचासी, पचासी दा पावे पंजाह सालां दा होवे। जद पंजाह सालां दा होया कहिंदे ने होर अवस्था वधी, पग खिसके सठी के बड़े पा आवे। पग खिसना शुरू होया जिवें साहब कहिंदे ने

मेरी मेरी कर दे जन्म चला है। अवस्था इतनी बिरध हो गई कहने ने अंत समा आ गया ते अंत समा संगियां साथियां ने पुंजे पा दिता आखिरी सवास ने कहने ने पुंजे पा दे पुंजे पा के ना कोल जोत जगा दी पंडित जी आ गए मुंह अमृत जल पाउन लग पाए ते कहने ने ये आखिरी समय ते आया इंसान हिम्मत करके कहता है मेरा पुत्र किथे घर वाली आख्या महाराज तुहाडे पास छड़ी हथ बैठ कहने ने कुछ देर बाद फिर एक आवाज आई दूसरा पुत्र किथे आख्या जी तुहाडे खब्बे हथ बैठ कुछ समा फिर बीते कहने ने आखिरी आख्या मेरा तीसरा पुत्र किथे आख्या जी वही तुहाडे चरणा विच बैठ कहने ने इतनियां गल्लां कर दे इस ते मुंह आवाज निकली जे सारे पुत्र मेरे कोल बैठे ने ते दुकान ते कौन गए कहण तो पास अंत समा भी आया लेकिन ध्यान प्रभु वाल नहीं गया दुकान वाल चला गया साहब कहने नहीं ऐसे जन्म का की लाभ है गुरु अमरदास पातशाह बिरध अवस्था है

0: तुच्छ बन के जाया कर, झोली अड के जाया कर, बड़ा कुछ मिलेगा, बड़ा कुछ मिलेगा, इन्ना मिलेगा तो चुकया नहीं जाएगा। मेरे पातशाह कहते ने पारस परसे, फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा धारी, जिन्हां ते परिपूर्ण परमात्मा ने की कृपा वो गुरमुख प्यारे पारस हो गए, पर जिहड़ा उन्हां दी संपर्क विच भी आया है ओदा जीवन बदल गया।
1: एक भेख करहे फिरहे अभिमानी,
0: कहिंदे केवल ते केवल जिवें कल भी हुक्मनामा आया सी भेख बारे, एक ओ लोग ने जेड़े केवल ते केवल पड़ावे ते जोड़ देंदे ने पड़ावे ते, और उन्हां नूं अहंकार है, मैं कदे पेंट नहीं पाई, तू पेंट पा के ताबिया बैठा मेरा मुकाबला किवें करेगा, इहदा भाव के तैनू पजामे ते चोली नाल सर्टिफिकेट फिर मिल गया मुक्ति दा, उन्हें पेंट पारी तो काफर हो गया। आपां भी आकर दे जे जिहड़े सी चोलियां वाले ना, असीं पेंट वाले नूं डिसलाइक करदे भी चोला इहने पेंट पाई, भला इह किवें गुरसिख हो जाएगा। मैं हैरानी दी गल, ओह किहड़ी पोथी जिथे लिखिया भी पेंट वाला गुरसिख ही नहीं। गुरु प्यारो केवल ते केवल कपड़िया नाल उलझिए, हां जिहड़ा कशहरा वह लाजमी है, जिहड़े पंज कारण ना वह लाजमी ने। आपां केवल ते केवल कपड़िया उलझे हुए, कपड़िया दे विच ही उन्हें गुलाबी पग बधी उन्हें ताबिया च उठा दिओ, गुलाबी पग बधी तो ताबिया च उठा दिओ। दसो किसे लिखा है? मेरे पातशाह कहिंदे ने एक ओ मनुख ने जेड़े केवल ते केवल लिबास करके अहंकार करदे ने, लिबास करके एक भेख करे फिर अभिमानी। एक ओ मनुख जेड़े केवल ते परावे करके अहंकार करदे ने, ओ कहे लोग हन
1: इन जुआ बाजी हारे।
0: कहिंदे ने उन्हां ने एक कीमती जीवन जिवें जुए च जवारिया बाजी हार जांदा ना, इस प्रकार वह मनुखा जीवन हार गया है। एक दिन भाई गुरदास ने मेरी चंगी झंड की, चंगी बेइज्जती की, वो कि गलो आप कई बार गुरुद्वारे नहीं होती, मीह कणी पवे तक अच की लैन जाना है। मैं कई दिन आया ना, तो भाई गुरदास कहते बेशर्मा क्यों नहीं गुरुद्वारे गया, बहाना बनाया जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मीह बड़ा पैंदा सी, कहिंदे तूं तां जगवारियां ते चोरां नाल ही माड़ा। मैं कहा जी मैं अमृतधारी सिख नितनेमी इन्ना माड़ा? उन्हां फिर मेरे ते विचारां दी झड़ी ला दित्ती। ओह कहिंदे ने चोरी चोर ना पलरै, लख दुख गरठे लै रह ना गणका वाड़ियो, बेकर्मी लठे। शर्म का सिर नीवा हो गया। कहिंदे जुआरिए देखे कदे? मैं कह जी पंजाब ना देखे है। कहिंदे जुआरिए जिंदगी परिजान धारी जाते पर जुआ नहीं छड़दे। चोरी चोर ना पल्ले लख दो गरठे, चोर नूं पंजाह वेर जुतियां पईआं, कुट खाधी, मूंह काला कीता, उन्हें चोरी नहीं छड़ी। तू गुरु का सिख होके चार कणियां पईआं तो गुरुद्वारे नहीं गया? शर्म नाल सिर नीवा हो गया। वह कहिंदे चोर ने चोरी नहीं छड़ी, जुआरिए ने जुआ नहीं छड़िया, तू सिख हो कहना भी मेरे कपड़िया ते छटा पै जाणगियां, जा भाई तू चोरां ते यारां नालों फेल। मेरा शर्म नाल सिर नीवा हो गया ते बिल्कुल इन्हां सही गल आखी है। कहिंदे इस प्रकार ये वह मनुख ने जिन्हां नूं केवल ते केवल लिबास का अहंकार है, अपने जन्म नूं जुए विच हार गए।
1: एक आन दिन भगत करे दिन राते,
0: ओ गुरु के लाल ने जिहड़े दिने रात परमात्मा नूं चेते करदे ने, पै विच ने उहनूं चेतदे हन, उहदी इबादत करदे ने, बंदगी करदे हन।
1: राम नाम उर तारे,
0: केवल ते केवल विखाले मात्री ने उहनां ने परमात्मा दे नाम नूं अपने हिरदे दे अंदर धारना कीता है, ग्रहण कीता, उहदे मुताबिक चलदे हन।
1: आन दिन राते सहजे माते,
0: इस प्रकार दिने रात परमात्मा नाल प्रेम करन करके उहनां प्रभु प्यारियां दा मन अडोल हो गया, उहनां नूं ज्ञान दी मस्ती चढ़।

संसार दे उत्ते दुनिया उत्ते बाबे क्या ते बाबर क्या दी टक्कर पहले दिन तो चलती आ रही है, जिसमें सिख कौम का खुरा खोद मिटाने की खातर सिखां की हथियारी पापन ने व्योतबंदी बनाई, क्योंकि लाहौर दरबार ते दिल्ली के दरबार वालों सिख कौम कदे इंसाफ नहीं मिले है। और लाहौर का तख्त जिते गुरु अर्जन देव साहब महाराज जिन्होंने तत्ती तवी उत्ते बिठाया गया, फीस उत्ते तत्ती रेत पाई गई, और दिल्ली का तख्त जिते मेरे नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्होंने शहीद किया गया, जिते भाई मती दास जी आरे ने दफार किया गया, भाई सतीश दास जी रूई में लपेट के साड़िया गया, भाई दयाला जी देगा दे काड़िया गया। इधर लाहौर का तख्त जिते भाई तारू सिंह के सिर का खोपर उतारिया गया, और लाहौर का तख्त जिन्हें सिख कौम के नाल अन्याय किया, जदों इंदिरा गांधी ने व्यवस्था बनाईया सिख कौम को खत्म कर दिया, कुछ साडे जुली चक लीडर अपने स्वार्था खातर अपने लालच खातर हां दे विच हां भरन लगे। समा आया जून 84 का, इसने बाहर दियां फौजां मंगवाईयां, टैंक मंगवाने आरंभ कर दिते, केबल तां केबल दिल्ली रोड दे उत्ते मेन रोड दे उत्ते कोई होर ट्रैफिक नहीं चल सकती, सारियां उत्ते पाबंदी ला दित्ती, कर्फ्यू ला दित्ता, केबल तां केबल फौजां जा सकदियां ने, और टैंक लैके तोपां लैके लखां दी तादाद दे विच फौजां बंगाल दियां फौजां कलकत्ते तों फौजां दरबार साहब की पावर धरती उत्ते पहुंचाउणी आरंभ कर दित्तियां गईयां। हौली हौली अमृतसर श्री दरबार साहब की पावर पवित्र धरती इहदे जो नाल दे इमारतां दे नाल दे घर ने उहनां नूं फौज ने खाली कराउणा शुरू कर दिता, विच मोर्चे बनाउणे आरंभ कर दित्ते। 1 जून वाले दिन जदों चढ़ के आईयां फौजां ने दरबार साहब की पावन पवित्र धरती उत्ते अटैक किया, क्योंकि उन्हां दिनां विच गुरु अर्जन देव साहिब महाराज का शहीदी पर्व मनाउण वास्ते दुनिया के कोने कोने तों सिख संगतां लखां की तादाद दे विच गुरु रामदास साहिब महाराज की पावन पवित्र धरती जिथे सिपे साहब नहीं पुजेहिया उस पावन पवित्र धरती के दर्शन दारे करने वास्ते पहुंची हुई संगतां उत्ते 1 जून वाले दिन फौजां ने पहला फैर आरंभ किए, जिदे विच बहुत वड्डी गिणती विच आईयां हुई सिख संगतां शहीदी प्राप्त कर गईयां। और जिहड़ियां सिख संगतां नूं अज तक जिहड़ियां भैणां दे वीर गुरु महाराज दा शहीदी पर्व मनाउण वास्ते दरबार साहिब दी पावन पवित्र धरती उत्ते गए अज तक वापस नहीं मुड़े, जिहड़ियां मावां दे पुत गए ओह अज तक नहीं गए मुड़े, जिहड़े बच्चियां दे माता पिता गए ओह अज तक भी अपने माता पिता दी राहां तकदे ने कि कदों वापस मुड़ के आउणगे। इस बुचड़ सरकार ने जिवें सिखां दे उत्ते जुल्म ढाया उस बादशाह नूं ढाडी जत्ता क्यों बयान कर रहे हैं।